के हुए कर्म को फल देने वाले. वट एवर यू गेट इन दिस वर्ल्ड, वट एवर इज डेस्टिन्ड टू, इट कम्स बिकॉज ऑफ कर्म. इस तो यह सिद्ध हुआ ईश्वर को कर्मे भूषभूत है. दिस इज वाई भगवान सर जैसे कर्मे जिसने किया है वैसे ही फल मिला है. एज यू परफॉर्म एक्शन सो यू वुड रीप द रिवॉर्ड, यू वुड मीट विद वट एवर इज द इक्विवेलेंट रिवॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव डन. ईश्वर अपनी की ओर से कुछ नहीं सकता है, इस बात से निश्चय हुआ. दिस इज वे ऑफ द वर्ल्ड कि फल किससे देने वाले हैं, कर्मा को प्रदान रहे हैं. कर्मा इज व्हाट रन्स, दिस इज द नेचुरल विल ऑफ द वर्ल्ड. इसलिए कर्मा को जब तहारा की ईश्वर क्या कस्तो है, दिस इज कॉलिंग ऑफ लॉर्ड. सो व्हाट डज दिस हैव ऑफ कोर्स, ही सेज वेरी ब्यूटीफुल, जब कर्मा को प्रदान करता हूं इंद्र के क्या प्रयोजन है. व्हाट इंद्र हैव टू डू इट ऑल ऑफ दिस, व्हाई इज ही, हाउ इज ही इन्वॉल्वड इन दिस होल प्रोसेस. दिस इज यू नो प्राणी के स्वभाव वशीभूत है और स्वभाव को बहते हैं. दिस लाइफ इज रन बाय स्वभाव, बाय द नेचर द जीवात्मा इज रन. व्हाट डज दिस हैव टू डू विद एनीथिंग. सो भगवान सेज वेरी ब्यूटीफुली, सुखदेव एक्सप्लेन दैट परीक्षित, व्हेन भगवान श्री कृष्ण बिगिन्स टू शेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लिसन टू व्हाट टेक्स प्लेस.

अनलाइक दिस ऑफ कोर्स इंद्र को हमारे पूरे देश नगर को ग्राम कुछ भी नहीं है डोंट डू दिस थिंग्स एंड भगवान एक्सप्लेन्स वेरी ब्यूटीफुली.

पांच सुपारी आगे के मित्र को चार के जहाँ को श्री कृष्ण चंद्र मिलेगा या बुद्ध शोभा कव के दिन ब्रजवासियों को प्रसन्न होकर गिजा प्रदक्षिण लगे सुंदर गोपो को श्री कोमल किसको पावल चले है दे पैकरम गोवर्धन वन डे वो फिनिश दे टुक फ्लावर्स इन देयर हैंड्स टेक सम फ्लावर्स फ्रॉम दे टुक फ्लावर्स इन देयर हैंड्स ऑफ कोर्स तुम साक्षात कृष्ण चंद्रस्य पुनिपूर्णतस्य च गोलोके गोगणैर्युक्तं गोपगोपालं संयुते त्वं हि गोवर्धनो नाम वृन्दारण्यभिराजसि त्वन्नो गिरीनां सर्वेषं गिरिराजोऽसि सम्प्रतम् नमो वृन्दावनं गायतुभ्यं गोलोकमौलिने पूर्णब्रह्मतापत्राय नमो गोवर्धनाय च एक बार बोलो श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय दे ऑफर When they did this, of course, Krishnastvam Rupam Gopipra Bhavanam Gata Shailas Asmiti Bravan Bhori Balamadhyaya Pridusha. Sri Krishna himself, of course, he himself says, Aham Govardhanam. This verse tells you very beautifully. Namo Vrindavan Kaya Tubhya Goloka Maulini. I bow to Divine Lord of Vrindavan. Purna Pandatraya, he who exists in the form of Sarvesham Giriraje Asi Sampratam. He who exists in the form of Govardhan. Namo Govardhanayacha. I bow to you, O Lord, in this most wondrous form. And when this was done, they all performed sacrifice. Indra Maharaj looking on. Yaha Govardhanam ke pujawade sarastri shirekide. Joko banbasi ko diskar kar le baale hain. And Shukadev ji bole, hey Rajan. इंद्र के ब्रज अपने के पूजा लोक देख कर श्री कृष्ण भगवान को जिन नाते नंद ब्रजवासियों अपने के शत्रु समाज अंति को कोप क्या कारण मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन पूजा को यू ऑल आर लिविंग आउट माय पूजा एंड यू आर डूइंग पूजा गोवर्धन पूजा मैं इंद्र हूँ आई एम इंद्र और अभिमानी इंद्र मोह क्रोध के अत्यंत कठोर वचन अहो बड़े आश्चर्य बात को करने लगे एंड वेरी वंडरफुल स्पेक्टिकल टुक प्लेस सुरधीर इंद्र को मेरे अपराध को कुछ आगे के निवास को मेकिंग दिस मिस्टेक दे विल पे डियरली एंड सो ऑफ कोर्स ही अनलीश्ड द क्लाउड्स एंड द रेन्स दैट इवन कम एट समवर्तन एंड लाइक दिस दे स्टार्टेड

एक्सपीरियंस ग्रेट रेनफॉल टर्ब वहाँ बचाल को मूढ़ का ज्ञानी है दे आर फूल्स दे शुड नॉट लिसन ऑफ कोर्स एंड व्हेन दिस टुक प्लेस भगवान सेज शुकदेव जी कहते हे राजन मे को इस प्रातः इंद्र का पाया को मुक्त बंड नरित हो गोकुल पर से बड़ा वर्ष हुआ बड़ी वर्ष हुआ है रेन्स काउंटलेस रेन्स गोविंद कृष्ण को शरण आए हैं दे वेंट टू भगवान कृष्ण एंड दे आस्क्ड भगवान

भक्तवत्सल शिलावर्ष पितेन हन्यमाने चेतसं निरीक्ष्य भगवान् मीना कूपेन्द्र कृतं हरि नरो कृष्ण कृष्ण महायोगिं त्वं नाथ गोकुलं यु आर द लॉर्ड ऑफ गोकुल त्रातुं अर्हसि देवानं डू समथिंग टू सेव अस ओ लॉर्ड शीलवर्ष पावते हन्यमाने चेतसं अपॉन योर इंस्ट्रक्शन वी परफॉर्म सच एंड व्हेन भगवान सॉ दिस ही वेटेड

अपना अपना अंदाज समझाते हैं अपने तन मन धन बाजते ऑलरेडी बोल रहे हैं गोकुल ही वांटेड टू सी द लेवल ऑफ फेथ द डिवोशन दैट वाज देयर एंड ऑफ कोर्स दत्त कतुर लॉर्ड हु इज मर्सीफुल टू हिज सर्वेंट्स टुक अप गोवर्धन पर्वत और चंद्र चंद्रमुख श्याम सुंदर के सात दिन तक तड़के थोड़ा अंक थे खड़े के तेल चढ़ने वाले लिटिल फिंगर एंड हेल्ड इट अप फॉर सात दिन तक पर्वत फॉर सेवन डेज इट स्टेड हे गोपो व्हेन द गोपीज द ग्वाल्स दे सॉ दिस ब्रजवासियो कृष्णा गोपाल प्रवान कर दिए कभी मन में आश्चर्य मान लगे हैं दे लव फॉर श्री कृष्ण दे फेथ इन द भगवान कंटिन्यू एंड दैट्स व्हाई आई लीव यू दिस इवनिंग व्हेन यू डू दिस लव ग्रोज एंड फेथ सील्स Your faith increases, and when that happens, that takes you closer to Bhagwan. Yashoda Dohini Nanduko Rama Shivali Namara Krishna Malinga Yudhrajarasha Snehakari. Yashoda Dohini Nandraj Balio Balwan Baldevji Maharaj Krishna Chandra Hegare Kalasneh. They all hugged the Lord and they chanted, of course, and they sang the praises of the Raja Swarishtam Sulaya Braja Hari. Truly, He is the Lord, Lord of. Braj Gunadi Gaane Lage, they started to sing his praises.

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति.
1: रिकी रामलगन विथ यू एंड इट्स योर सुंदर सपना 102.7 FM.

अच्छा लगता है। एहसास ख्यालों का कभी अच्छा लगता है। ऐ दिल तू मुझको बता, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है।

देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है

0: And another Kishore Kumar for you guys. 29 before 6.
1: अरे देख रहे हैं?
2: तो देखने दो.
1: जल भी रहे हैं?
2: अरे तो जलने दो.
1: खुली सड़क है बाबा.
2: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए.
2: हट जाए.

GOAT, goat, goat माने बकरी, LION, lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?